0: Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: धान धाधीना कत धाधीना धान धीना धीना कत तेरे कित धाधीना त्रकदे घिना धा धा घिना धिन धिन धिना ना धिन धिना त्रकदे तेरे कित धा धाधीना कत धा धाधीना त्रिकड़ा धा धिन्ना त्रिकड़ा त्रिकड़ी त्रिकड़ा धाटी धाके धिन्ना के ना घेना धाटी धाके धिन्ना।